एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई 2026।

आकाशवाणी सवाई माधोपुर का ये रणथंभौर चैनल है एफएम बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को है, लीजिए सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुटीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है।

0: इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रणथंभौर चैनल है एफएम बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भक्ति गीत।

ये भक्ति गीत था पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में। लीजिए अब सुनिए लक्ष्मी शंकर की आवाज में अगली भक्ति रचना।

महेंद्र कपूर, आशा भोंसले और साथियों की आवाज में ये भक्ति गीत था। श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। डीजे अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में।

श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचर संगीत सरिता। प्रातः 7 बजे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंभौर आप सुनेंगे। समाचार प्रभात का समय रहेगा प्रातः 8 बजे। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन सकते हैं प्रातः 8:30 पर। आज के हमारे लोक कलाकार होंगे भूपेंद्र शर्मा। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा सुबह 9 बजे। 9:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। गाने नए पुराने आप सुन सकते हैं प्रातः 9:30 पर। प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्र सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 1:05 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम। अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे। 2:15 पर आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

युवा साथी अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5 बजे। 5:45 पर समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम गोधूली का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। 6:40 पर होगी जिले की चिट्ठी। 6:50 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषकों के लिए आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

8:30 पर आप सुनेंगे यादों के स्वर, जिसमें आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे समय रहेगा फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुनेगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार। 10:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम ढलती जाए रात। हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं रात्रि 11 बजे और 11:05 पर हमारी प्रसारण सभा का समापन होगा।

श्रोताओं, तो ये था कार्यक्रम विवरण, जिसमें आज आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। लीजिए अब सुनिए हमारे विविध भारती केंद्र से अनुप्रसारित श्री रामचरितमानस गान।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते।

दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायु वेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कल्पना जी, आज की इस कड़ी में हमें बताइए सबसे पहले कि बंदिशें तैयार करने में विषयों का चुनाव किस तरह से किया जाता है और ज्यादातर किन भाषाओं में बंदिशें तैयार की जाती हैं?
2: जी, भाषा तो अक्सर हिंदी, अवधी, ब्रिज बोली में अधिकतर पाई जाती है। कुछ कुछ राजस्थानी, बिहारी और मराठी भाषा में भी कई बंदिशें बनाई, पंजाबी में बहुत सारी बंदिशें बनाई गई। तो उस स्थान का भी असर होता है बोली पर
1: जी।
2: तो भाषा बोली भी अलग अलग थोड़ी हर एक कला

0: के आसपास के वातावरण के हिसाब से बदल जाती है। और उसके साथ साथ विषय जो है वो भक्ति श्रृंगार प्रकृति से संबंधित
1: जी
0: वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, उत्सवों का वर्णन और गायन वादन में जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उनके बारे में भी कई बंदिशें बनी हुई हैं।
1: जी
0: तो ऐसे हर कलाकार के बंदिश बनाते समय जो आगरा जयपुर घराने की गायकी
1: जी
0: आपके गायन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपने भी कई रचनाओं का निर्माण किया हुआ है।
1: जी
0: तो आज कुमुदिनी जी ने बनाई हुई राग बिलास खानी तोड़ी में एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तीन ताल में बंधी हुई ये बंदिश है,
1: जी जी
0: कैसे समझाऊं। बिलास खानी तोड़ी, इस नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि ये राग तोड़ी का ही प्रकार होगा। इसका थाट जो है भैरवी थाट है, क्योंकि इसमें अधिकतर स्वर भैरवी के ही लगते हैं। इसके आरोह में मध्यम और अवरोह में पंचम वर्जित है, इसलिए इसकी जाति षाड़व षाड़व है। तोड़ी अंग को ध्यान में रखकर मेंड के प्रयोग से ही यह राग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और शुद्ध मध्यम के प्रयोग से भूपाल तोड़ी से भिन्न हो जाता है। और धैवत प्रमुख स्वर या वादी स्वर हम कह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर राग है, प्रातःकालीन राग है। इसका चलन मैं आपके सामने प्रस्तुत
1: जी
0: करती हूँ।
1: जी
0: इसके आरोह में मणि वर्ज है और अवरोह में पंचम वर्जित है। इसका चलन वक्र रूप से जाता है जो मैं अब आपको बताती हूँ।

0: वाह, कैसे समझाऊं मानत नहीं मोरा जियरवा। बड़ी सुंदर रचना थी और बड़े सुंदर अंदाज में आपने प्रस्तुत किया, यूं कहें कि मोहित कर लिया अपने गायन से। अब बताइए हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगे आप?
1: अब कुमुदिनी जी की आवाज में उन्हीं की बनाई बंदिश राग भैरव में प्रस्तुत करते हैं। ताल तीन ताल एवं शब्द है शंभो गिरिजापति।

अब आपके सामने राग भीम पलासी में एक बंदिश हमारे भाग आज जागे कुमुदिनी जी की आवाज में प्रस्तुत है।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग। संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत सरिता। आकाशवाणी सवाई माधोपुर का ये रणथंभौर चैनल है एफएम बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज पर। विजय श्रोताओं, आप सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम में आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रोताओं, इसी क्रम में आज हम आपको अपनी सबसे पहली फरमाइश सुना रहे हैं फिल्म राजा और रंक से, जिसको सुनने के लिए हमें फोन किया है कुंदलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, शंकर कोंडावा, संजय मुरम्मेकर और भगवान खोदकर ने। लीजिए सुनिए इन सभी की फरमाइश पर फिल्म राजा और रंक का लता मंगेशकर के स्वर में गाया हुआ ये गीत।

फिल्म क्रांति का ये गीत था जिसको सुनने के लिए हमें फोन किया था रायपुर झालावाड़ से मुकेश कुमार गुप्ता ने। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो रणथंबोर। कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत आप भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमें प्रतिदिन सुबह 6:40 से 6:55 के बीच हमारे फोन नंबर्स 2216221 पर कॉल कर सकते हैं। सवाईमाधोपुर का एसटीडी कोड है 07462। श्रोताओं कॉल करने के साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का ईमेल एड्रेस है airswm1992@gmail.com। लीजिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है अहमदाबाद गुजरात से कृष्ण भाई रेबारी, हीराबेन, कमल और विजय रेबारी की। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लव 86 का ये गीत।

फिल्म रेड पिक्चर का ये गीत था कमाल खान की आवाज में। गीत को सुनने के लिए हमें फोन किया था मथुरा उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन, व्योमिनी और पुरंजय ने। आप सुन रहे हैं फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परदेश से, जिसको सुनने के लिए हमें फोन किया है पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से उमाशंकर पटेल, शांति, नंदिनी।

मध्य प्रदेश से उमाशंकर पटेल, शांति, नंदिनी, प्रियांशी, माधव, यशवंत और सिमरन ने। तो लीजिए सुनिए इन सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: फिल्म सौतन का ये गीत था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को सुनने के लिए हमें फोन किया था चाँद का भरवाड़ा सवाई माधोपुर से सीताराम सैनी ने। श्रोताओं कार्यक्रम में लौटते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

श्रोताओं, अगला गीत है बप्पी लाहिड़ी की आवाज में, फिल्म का नाम सत्यमेव जयते। गीत को सुनने के लिए हमें फोन किया है आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया ने।

फिल्म खुद्दार का ये गीत था सोनू निगम की आवाज में। गीत को सुनने के लिए हमें फोन किया विदिशा मध्य प्रदेश से यतीश ने। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिंदूर से, जिसको सुनने के लिए हमें फोन किया है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, अंकिता, कृषक वेगा और सुनीता सिंह ने। लीजिए सुनिए इन सभी की फरमाइश पर सिंदूर फिल्म का लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में गाया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, अगला गीत है फिल्म कच्चे धागे से, जिसको सुनने के लिए हमें ईमेल किया है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से अभय कुमार ने। लीजिए सुनिए इनकी फरमाइश पर फिल्म कच्चे धागे का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत है कुमार शानू और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए। गीत को सुनने के लिए हमें फोन किया है बुगला जयपुर से पूरन वर्मा ने। तो लीजिए सुनिए कुमार शानू की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, ये थी हमारे कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश। इसी गीत के साथ हमारा आज का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो रणथंभौर यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मामकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।

0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना

0: बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
2: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
4: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
2: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई

0: करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the art of living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or meditation hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Center, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honored with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the 4-laning of National Highway 167, from Gudde Belur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra

श्रोताओं, ये लोकगीत था भूपेंद्र शर्मा की आवाज में और इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम लोक रंग यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। सुबह के 9 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्री सुब्रमणि पदभार ग्रहण करने के साथ ही सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। केंद्र ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख भी नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रूपये की है। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से ये आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 60 से अधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और परामर्शदाता भाग लेंगे। ये परियोजना इस साल जुलाई से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण

0: मॉड्यूल सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भिवाड़ी में जलभराव की समस्या के निवारण के लिए 34 एमएलडी का एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन इसी सप्ताह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इसके अलावा सीईटीपी से पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डालने का काम भी जल्द शुरू होगा और नेशनल हाईवे 919 की समस्या का भी समाधान जल्द किया जाएगा। श्री यादव कल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वे अलवर जिले के विकास के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे।
1: भिवाड़ी की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की है, हमने 34 एमएलडी का जो संयंत्र है वेस्ट पानी का उसको कम्प्लीट कर लिया है और माननीय बालकनाथ जी के साथ जो एक काम पूरा हुआ है इसी हफ्ते में मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन करेंगे। पानी को निकालने के लिए जो पाइपलाइन का विषय है उसकी भी पैसा आवंटन करा दिया है और उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा के ये काम हम करेंगे। और जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी डीपीआर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो इसका 2/3 हिस्सा तो अब उद्घाटन हो जाएगा, 1/3 हिस्से का टेंडर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ एनएचआईसेशन जल्दी से जल्दी पूरा कराएगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर के एक दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे पुष्कर क्षेत्र के कडेल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लेंगे। चौपाल में श्री शर्मा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री का कल गांव का भ्रमण कर स्थानीय व्यवस्थाओं और विकास कार्यों के अवलोकन का भी कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देशभर में आयोजित इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रदेश में राजीनामे के जरिए कुल 46,91,311 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 7,15,00,00,000 रुपए से अधिक के अवार्ड जारी किए गए। लोक अदालत में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उपस्थित पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों को तय किया जाता है जिसे पक्षकार का समय और धन दोनों बचाया जा सके। कई पक्षकारों के बीच सिविल और छोटे आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे आपसी राजीनामे से सुलझाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है, जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। मातृत्व दिवस पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज मदर्स डे के अवसर पर पूरा प्रदेश अपनी माताओं के सम्मान में भावनाओं के रंगों से सराबोर है। कहीं बच्चे अपनी माँ को उपहार दे रहे हैं तो कहीं माँ के सम्मान में कार्यक्रम और समारोह रखे जा रहे हैं। माँ वह कविता है जिसे शब्दों में पूरा नहीं लिखा जा सकता। वह घर की धड़कन है जो अपने सपनों को चुपचाप बच्चों की मुस्कान में बुन देती है। उसकी दुआएं जीवन की हर कठिन राह को आसान बना देती हैं। आज का दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि उस अनकहे प्रेम को महसूस करने का अवसर है जो माँ हर दिन बिना किसी अपेक्षा के हमें देती है। आइए इस विशेष अवसर पर हम अपनी माताओं को केवल धन्यवाद ही नहीं बल्कि सम्मान, समय और अपनापन भी दें। प्रदेश की सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
0: प्रदेश में मौसम की

0: दो रूप देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी जिलों में लगातार मौसम शुष्क बने रहने से भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। वहां अधिकतम तापमान एक बार फिर 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कल बाड़मेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर, बीकानेर, फलौदी और चित्तौड़गढ़ में पारा 43 डिग्री से ज्यादा रहा। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ आंधी चली और बारिश हुई। नागौर के मेड़ता में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल और परसों बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
1: आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 101.5 MHz पर ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। डीजे श्रोताओं, सुनिए गीत और गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, ये गजल थी जगजीत सिंह की आवाज में। गजल लिखी थी मुजफ्फर वारसी ने। कार्यक्रम में लौटते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हफीज जालंधरी साहब का एक शेर सुनिए, क्यों हिजर के शिकवे करता है, क्यों दर्द के मारे रोता है, अब इश्क किया तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। जिगर साहब ने फरमाया था, गजल अपने जाती तजुर्बों को लफ्जों में बयान करने का नाम है। और यहाँ तो साहब यह आलम है कि इश्क में जान पे बनाई है, इश्क में जान पे बनाई है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म अनोखा बंधन का ये गीत है अलका याग्निक की आवाज में।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आओ कैसे मेरी? आओ। नहीं झुमके?
2: ना। पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: जी श्रोताओं, आप सुनिए एस डी बर्मन की आवाज में तलाश फिल्म का ये गीत, जिसको लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है एस डी बर्मन का।

0: जंगल में दूजा है
1: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: जी श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म छोटा भाई का ये गीत।

मिर्जा फिल्म का ये गीत था सुनिधि चौहान और नताशा तेजुरा की आवाज में। अगला गीत है शंकर महादेवन की आवाज में, फिल्म का नाम तारे जमीन पर। गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का सफर यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
1: हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
2: जी
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
2: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
1: जी,
2: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादा

0: ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुने हैं या नाम रखिए
1: हाँ।
0: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, पेमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह
0: जी,
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी दादी?
0: पहला शो 1975 14 अप्रैल
1: जी,
0: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन,
1: हाँ हाँ
0: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
0: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता
0: मुहूर्त
1: है।
0: माना, तो
1: क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: एक 3.5 मुहूर्त बोलते अच्छे
1: हाँ
0: जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है,
1: जी
0: गुड़ी
1: जी
0: पाड़वा।
1: क्या बात है।
0: जी
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
0: हाँ,
1: हैं।
0: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
1: जी जी
0: मन्नादा के साथ मैं एक गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कोणा से, वो जो गाना है
1: जी
0: मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कोणा से। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
1: जी
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
1: अच्छा
0: बोली
1: अच्छा
0: तू तो मेरे लिए गाओगी? तो मैंने हाँ जरूर गाओगी।
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया उस
1: वाह
0: दिन
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फेहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ हाँ
0: इस तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
0: हाँ जी,
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
0: हाँ जी
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
0: जी
1: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
0: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
1: हाँ
0: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह क्या बात
0: आई
1: है।
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना
1: गायिकाओं ने अलग
0: है।
1: अलग
0: हाँ,
1: मौके पे इसे
0: ऐसे मैं
1: गाया है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी जी
0: उसकी झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: उर्मिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव में
1: हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब ऐसे।
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। जैसे घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: अतिथि सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाने का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी, जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं बम्बई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी, जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा,
1: संगीत शारदा।
0: जी, जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जारी थी।
0: हाँ।
1: तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
0: ये महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी
0: अच्छा,
1: फ्रेंड्स वगैरह थे।
0: हाँ, हाँ,
1: बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर जरूर।

0: वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती, पुरुष
0: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट।

0: यार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म विजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद। फिल्म विजन भी चालू है कभी पता नहीं, तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक का एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गई।
0: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है।
0: हाँ।
2: और 58 को शादी हो गई 16 साल की।
0: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया तो मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
0: जी
2: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
0: हाँ।
2: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई। और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
0: हाँ।
2: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है।
0: हाँ।
2: कि जाओ कि नहीं, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
0: वाह।
2: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
2: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस कप मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जाप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस कप का, तो नंदी रुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी, कि हमने चलेगी
0: दौड़ेगी
2: कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा।
0: क्या बात।
2: और दो बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है,
0: जी जी,
2: उनका वहां इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा वहां जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके। अच्छा। गाने ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
2: मराठी में गाने थे
0: जी।

0: लिए। बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
1: गए।
0: हाँ।
1: फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ,
0: हाँ, हाँ।
1: जाने के लिए मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीका का।
0: हाँ, हाँ।
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए। तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ।
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
0: हाँ।
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गा। तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी, जी।
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम।
0: हाँ, हाँ।
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी, जी।
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस हाँ, किया हाँ, उनको
0: जी, जी।
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमते, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी, जी।
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा। एक बार स्टेज पे गए छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि अपने तीन चार गाने गा के ये लोगों को सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में। रफी साहब को किशोर

0: गीत लिखे थे, एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे।
1: अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
0: क्या बात है।
1: आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी।
0: हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे। मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं, तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में।
1: अब ये समझ सकते हैं श्रोता कि किस जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है।
0: जॉनी मेरा नाम जी, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को?
1: राय साहब भूपिंदर सिंह
0: जी,
1: जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रणजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है।
0: जी हाँ,
1: वो
0: और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है।
1: वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी।
0: याद दिलाइए,
1: चलती का नाम गाड़ी।
0: हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार सज्जन साहब का था और थोड़ा सा, जी हाँ, थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं।
1: बिल्कुल
2: सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्टिस्ट से या कि हीरो से? आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे।
3: अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 वर्ष तक चला, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर हमने ज्वाइन किया, वहाँ कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया और फिर फिल्मों में हीरो बने, काफी अरसे तक हीरो रहे। नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी, और उसके बाद में हम बुड्ढे हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहे।
2: लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
3: बिल्कुल नहीं अजीब लगता, हमने तो ये समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे तब भी नशा लेके काम करते थे, हीरो थे तब भी मजा लेके काम करते थे, और आज भी जो रोल मिलता है हम उसके अंदर अपना पूरा मन लगाते हैं और उसके बाद में अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।
2: आजकल आपको, अब भी इस नए जमाने में जब आप काम करते हैं और आर्टिस्टों के साथ और किरदारों के साथ फिल्म में, तो जैसा पहले आपको सुकून मिलता था आर्टिस्टों के साथ काम करते, क्या आजकल भी इस नए जमाने में ऐसा लगता है कि नहीं? तो या ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर?
3: नहीं नहीं, ये तो असंभव है कि वैसा का वैसा सुकून कैसे मिल सकता है। आप जनरल बात ये समझिए कि पहले डायरेक्टर लोग भी कुछ कहानी ऐसी लेते थे जिसमें चरित्र चित्रण होता था, कुछ कहने को बात होती थी, कुछ दिखाने को बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था, और इत्मीनान से फिल्म बनती थी, तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो की वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे, और उसके बाद में जब दो दो शिफ्ट हैं, तीन तीन शिफ्ट हैं, अब कोई आदमी सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में 5-6 जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का, और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके तो नजर घड़ी पर है, अभी आया है, अभी 1-1.5 घंटे में भाग जाएगा, तब वो बात रही नहीं है, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके 1-man show करते हैं अपने, मतलब एक शो करते हैं समझो कि 6-8 महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहाँ कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है, शाइलॉग भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं समझे, गुरुदेव टैगोर क्या करते हैं, बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूँ इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं, हमने अब तक 74 शो किए हैं समझे, लंदन में भी किए तो अमेरिका में भी किए, तो कहने का मतलब ये है कि हम हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए वो हम वहां पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते, अगर जो हमने वहां परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़, इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूं, मैं इसलिए न तो दखल देता हूं और न ही उम्मीद।

0: करता हूँ कि मेरे दखल देने से यहाँ कुछ होने वाला।
1: मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही?
0: सेटिस्फेक्शन इतनी है भाई कि हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं बस। ये
1: ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिली, थिएटर में या कि फिल्मों में?
0: हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी। हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए, हम जूनियर आर्टिस्ट थे समझे, अभिनय तो उसमें भी बराबर करना है। और आज का जमाना एक ऐसा आया है कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसी तो कोई अलग अलग भेद तो है नहीं, सब जगह अभिनय।
1: हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल तकरीबन 90% लोग हैं वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो डॉक्टर है, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें।
0: आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है समझे। आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8-10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है समझे, और कम से कम वहाँ 400-500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछे कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को, काफी लोग
1: जो शहर
0: मुंबई हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूंगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पे ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए समझे, एक्टिंग करना है, बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए, उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर।
1: जब आप

चार्ज्ड हो जाएगा तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, समझे? तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं और वायदा किया अपने आपको 500 पीसेस तैयार होंगे तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी।

0: अमर जी
1: जी,
0: क्या गाना, वाह। बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना। न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता।
1: जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक
0: जी
1: 17 मई 2009 को, क्योंकि प्रकाश जी ने फिल्मों से, जिंदगी से, दुनिया से सबसे नाता तोड़ा और चले गए। पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बहुत कुछ खाली हो गया। लेकिन तो खैर सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने जन्म बनाया है तो मृत्यु भी बनाई है, यह अटल सत्य है। बहरहाल 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था
0: प्रकाश
1: मेहरा साहब का। और फिर ये आ गए मुंबई। आए तो थे ये गीतकार बनने मनीषा जी,
0: जी।
1: लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं, फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया। उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे, उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी,
0: शशि कपूर साहब की,
1: बिल्कुल। और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ।
0: कौन सा वाला गाना?
1: हसीना मान जाएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो था। और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे। और मनीषा जी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह,
0: याद आ गया वो भी गाना। आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आपकी जबान से।
1: ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब।
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में, मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया,
0: जिसने हमें महानायक दिया। फिल्म बनी जंजीर।
1: मनीषा जी, फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
0: बिल्कुल,
1: आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता, आप जरा किस्सा सुनाइए।
1: अब किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी
0: जी।
1: पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई, इसमें तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए 4-5 गाने डाले गए, या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे
0: जी।
1: और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जलों का,
0: दिल जला के,
1: प्राण साहब पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया। एक और था गाना, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आप जानती हैं गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था?
0: आप ही बता दीजिए ना।
1: गीतकार गुलशन बावरा थे वो।
0: क्या बात है,
1: जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा।
0: देखिए श्रोताओ, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई।
1: अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास। देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तो मैं तो रोमांटिक फिल्मों का हीरो हूं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की। अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने, सलीम साहब ने उनसे।
0: अच्छा।
1: और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए। और

0: और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास, लेकिन राजकुमार साहब ने तो अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे
1: जी,
0: उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे,
1: यही मुंबई में।
0: मुंबई में और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे
1: जी,
0: और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे। तब जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो।
1: क्या बात है, कहां से कहां, कहां से कहां, कैसी बातें निकली।
0: अब एक और किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार।
1: जी हाँ।
0: तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे
1: मनोज कुमार,
0: उसमें एक खान का किरदार था।
1: अच्छा।
0: और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो प्राण साहब ही करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे। और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था तो वो उन्होंने मना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया।
1: क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओ, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवा दें जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अब सुनवाएं इस रिकॉर्डिंग को।
0: बिल्कुल।
1: प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी ने।
2: प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ, मुंबई किस उम्र में आया?
3: ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था। फिल्म डिवीजन में इधर उधर दो चार लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थे, ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलने। वहां से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुंच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा की, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्म। मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को, मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहां दीवार पर बैठते थे। वहाँ दीवार पे बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे वहाँ, मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद दूसरा मुझे निकाल दे। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है।

0: अभी माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कह लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है, भाई काबिलियत है तो करो, यार मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला तो विनोद ने बोला कि मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आपके यहाँ काम करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ।
1: वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे,
0: वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ, उनसे ज्यादा सरशार सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर।
1: तो प्रकाश जी आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री?
0: आए थे राइटर बनने। अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्या साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, मैं उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वही हमारी फिर दोस्ती हो गई। काम करते करते बोनसागर के उसके तो हमारे दोस्त थे इंदुभूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदुभूषण से दोस्ती हो गई। इंदुभूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं देखिए मैं इंदुभूषण को यहाँ तक बोलता था कि इंदुभूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे एक साल बोनसागर के साथ और काम करने से। विल मेक ए फिल्म और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से, मोहन सहगल के वहां से एस एम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब एक साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। एक साल के बाद हमने उनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने वो इंदुभूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी पैसे की, नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जो मोनसागर के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई, किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ दम है। निरूपर आए जयराज को लेके, अमर सिंह राठौर, बोले तुम बनाओ, तुम्हें 50,000 रूपये देंगे, एक फीएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोनसागर का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा, यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की। बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तू घुसा है तो फिर उसके बाद तू निकल नहीं सकता, जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज टू बिलीव इन डेस्टिनी, आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसियरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो सिनेमा बन जाएगी शुरू हो गई, पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मान जाएगी रिलीज के एक महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांधरा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रूपये कैश दे गए, वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वाकर से, वो ही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे, हसीना मान जाएगी भी वो थे, हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे तो अपने घर से लाके हमें देते थे। बोले मगर एक हफ्ते में ले लूंगा और हम एक हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वाकर से पूछा कि एक ऑफर है नडियाड वाले की, एक ऑफर है मलिक चंद कोचर की, उनकी 4 ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसे कभी होता है? एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा, सोच तो लिया। तो जॉनी वॉकर ने कहा सब कर ले।
1: निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई फिल्म इंडस्ट्री में, तरह तरह के काम किए आपने।
0: प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था
1: जी,
0: बिकॉज आई यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पे सामान उठाया, कुलीगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था।
1: तो ये जो जंजीर

0: हम बात करें।
1: अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे
0: जी,
1: बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उनकी सारी उम्मीदें थी, वो भी रंजन की फिल्म बदहाल बन गई थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित कुबर यार कैफियत की, तो फिर मैंने जया से बात की जो समाधि में जया जी काम कर रही थी। सवारी कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा भाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा भाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट मैं मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त, दो ही नाम लिए जाते थे पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे, नहीं मैंने केदार कपूर को बोला है वो बना रहा है, तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। वो दे दिया, और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनतें करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मिंदर ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली इंस्पेक्टर और पठान के आगे, बोले यार आगे उसे मालूम है वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। किताब को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे, और हंसा बहुत वो। मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा था कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी ये लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। मैंने कहा ना कीप ऑन चेंजिंग द इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव मेड मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाया। मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे, तो राज जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा आनंद बहुत तारीफ करता है, चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने कहा राजी अभी 4-5 दिन में सेंसर हो जाएगी, तो मैं प्रिंट आपको, नहीं नहीं नहीं मैं थिएटर पर देखूंगा। यूसुफ भाई से बोले भाई हम भी देखेंगे। बहरहाल मफहूम क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है, राजीव की संगम है, आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता है।

0: हुए आते हैं सब, खस्ता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और
1: हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं मनीषा जी, कि हमें विविध भारती के माइक से बोलने का मौका मिलता है, हमें अपने श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का मौका मिलता है, हम अपने श्रोताओं के साथ अपना विविधा का खजाना, विविध भारती का खजाना बांट पाते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं।
0: और अमर जी, आज की इस विविधा को हमारे श्रोता याद रखेंगे, इस उम्मीद के साथ अब इजाजत लेते हैं, क्योंकि अगली विविधा में क्या लेकर आना है इसकी भी तो तैयारी करनी है।
1: बस
0: तो
1: निकलते ही लग जाएंगे अपने काम में,
0: और इस वक्त तो ले लेते हैं इजाजत। तो आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों

0: के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियुक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल है, चित्रगुप्त का संगीत है।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त की संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
3: पल पल दिल के।
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

आज तक थक थक गए नैना, पल पल छिन छिन पड़े न चैना, बात तक थक थक गए नैना, पल पल छिन छिन पड़े न चैना, जमुना तट पे बंसी बट में प्रेम रंग में डूबी राधा बोली, हाय बोली क्या बोली।

0: एल मालिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत बद्ध किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: चलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़े से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। बजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

आसमान में प्यार आए मेरी गाड़ी ढोल जाए कहीं देखे जो एक धक्का घर से तो कट चुका पत्ता हूँ नौजवान में अलबत्ता ओ मेरे लिए अब एक है।

प्यार की बाजी इस फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब डीजे यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी सवाई माधोपुर का ये रणथंभौर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। श्री विजय की टीवी के पार्टी को 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें मिली हैं और उन्होंने 120 विधायकों का समर्थन जुटाया है। श्री विजय 1967 के बाद राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी द्रविड़ पार्टी से नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक रूप से दी जाने वाली राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में करीब 150 साल पुरानी फतेह सागर और भूतनाथ तालाब अब नए स्वरूप में नजर आएंगे। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 1,38,00,000 रुपए की लागत से दोनों तालाबों के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। परियोजना के तहत तालाबों के घाटों और सीढ़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तालाबों के जीर्णोद्धार से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा। जैसलमेर में 45, फलौदी में 44.8, जोधपुर में 43.9, चित्तौड़गढ़ में 43.8 और बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और लू चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी जिलों में इसके विपरीत आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 101.5 MHz पर ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। दोपहर का 1:05 हुए हैं। निजी श्रोताओं, अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित।

0: कार्यक्रम।
1: ये तो बस आनंद का संवाद नहीं, हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी। जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा। आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी फरमाइश, जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं। देखिए तो जरा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ, एक सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का जमाना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा मिनट सेकंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि

ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, जिंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है जिंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूर्त मां सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है। दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया है, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह बिल्कुल सही है, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफर। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर जो बहुत ही खास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है। मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपये पहली बार कमाए और 245 रुपये की जीएमटी सोना घड़ी लेकर हाथ में बांधकर समय देखा जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:2 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के जमाने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज आवाज में टन की आवाज होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताजा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

वही हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नजर उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही है कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी, वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन

गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टनटन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही

और है। ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और जरा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

जलपा से एक श्रोता ने बताया कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत।

0: बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई, बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है, क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूं। जी हां, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहते हैं कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था, वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी एक श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से, क्या बात है। अपने एचएमटी के रिस्टवॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जिन्हें उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और न ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी, सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी एचएमटी की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे, तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे, और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी, अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी, बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूं क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूं, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना, बताइए स्वर किसका है।
1: आई बहाराज, आई बहार, बहाराज आई बहार, गुलशन में

मस्ती से डाले जो यूं झूम उठी, इस मस्त से इनकी आंखें लड़ी। मस्ती से डाले जो यूं झूम उठी, इस मस्त से इनकी आंखें लड़ी। आधर फूल

0: कदम नहीं, आइए शादी नहीं, आओ दुनिया बदलने का दिन आ गया ले, बोलो के हार बहार आज आई बहार, बहार आज आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिवहरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी, क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बजकर उतने मिनट। और एक और संदेश में, गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूं तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा, क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस

फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज है, अभी उस जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे केएल सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी हमारी एक साथी ने बताया, वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है, यहाँ दिन में दो बार बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत

बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है, तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन के वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती, तब अचानक हवा में तैरती चप्पल रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन बन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है, उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना बताइए, किस फिल्म का है और आवाज किन की है।

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूर सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भलाई हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा बगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में मां बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है मां, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का कांटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15 बजे, घड़ी मिनट दोनों कांटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है मां तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा

जैसे ही दुनिया में आता है उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ और चमकती आंखों से प्यार छलकाती मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

ममता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्रछाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियां, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियां हो या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदाई होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आंखों का वो तारा होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुंह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर मां निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

माँ की ममता निस्वार्थ है। बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है। इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।

इस जगत में हर बच्चे के साथ उसकी माँ का आंचल हो, ममता हो, दुलार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक

0: स्वच्छता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता

0: डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर सरमा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर सरमा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर सरमा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष

0: को लेकर अमरीका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी

0: में खतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चो आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम, तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी कहना तुमको पड़ा है ये क्यों करला।
0: अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये तुमने क्या पूछा, जो तुमसे झुक कर मिलता है वो है सबसे।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना कुछ न छुपाना, हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: चिन्नत देख तो आओ, ये गुड़िया है कौन बताओ, टुक टुक उनको ताक रही है, बैठी तड़खा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ ना ना, यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या, मुझको भी अब

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

कानून हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है सब

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना।

मोहम्मद रफी का गाया। औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों के मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?

0: कार्यक्रम मंच है गीत
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400909

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार की फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूरका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहर टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक पीएस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना।

0: वचन जरूर पूरा करूंगा।
1: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
2: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
1: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
2: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
1: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है। अब सच कह, नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
2: है बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
1: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
2: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ। उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
1: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने ये भी बताया था कि उसने धन कहाँ गाड़ रखा है?
2: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दन दनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
1: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
2: नहीं भैया नहीं, फोन करके जेल जाने से क्या फायदा। अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
1: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है। और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है?
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया

0: आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूँ बाबूजी, चाहता हूँ। ये कैसी मजबूरी है शिव कामी अम्माल, मुझ पर माँ के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उन्हीं को दारुण दुख से

0: माँ जी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
1: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है।

0: क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
0: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या?
0: ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
0: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
0: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
0: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ।
2: मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर ले, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ हमारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये। लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: Oh, damn it. इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेस बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mother! Mummy! Where are you? Oh, silly old lady!
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई है, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं

0: उखाड़े देती हूँ।
1: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मुझे, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मुझे है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
0: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
1: कौन? ओहो सिंगाराम, हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
1: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूंछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस सिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया है। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
1: जमीन में गड़ा धन? अंकल सिंगाराम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो।
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
1: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
1: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
1: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक बार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है, क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: शंगारम हाँ? शंगारम मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था है? तुमने कुमार स्वामी का
1: ओ, कमीने तूने मुझे गलत खबर देकर कंद स्वामी कहाँ है
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी तू भाग कर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माँ जी
0: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है, कौन यहाँ गिर पड़ा है?
0: क्या कहा माँ जी, ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं, मैं भाग आया और
3: पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे।

0: सोचा
1: सब सोच जाएगा कंद स्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
1: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
2: इसने मेरी बहन के बेटे को मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
1: जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
2: बात ये है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ
1: गए। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए।
3: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसी ने ही चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
1: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो।
4: बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
3: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
1: अच्छा, श्रृंगार में एक बेकसूर को फंसा कर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
5: अरे, अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा।
1: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
5: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। माँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। माँ, मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है।

0: क्यों कंदस्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट श्रृंगारम ने ऐसी चाल चली कि
1: जो होना था सो हो गया। श्रृंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
2: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना श्रृंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो कंदस्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
2: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये न समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
2: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूँ? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
2: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
1: भाई, मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
2: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चंबलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां पे सवेरा।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
3: क्या
0: 1993 फिल्म साहित्य

0: भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
0: जी,
1: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
0: हीरोइने भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
0: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कार्टून पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
0: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो है। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास, डर करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर में डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वैजा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वैजा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
0: कनेक्शन
1: सबके। तो वैजा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वैजा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
0: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से, वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर है, 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मेरे वहाँ पाली हिल पे हूँ, वहाँ पे आए वहाँ पे, तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूं, मैं उनका चेला हूं। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूं, एक दो दिन में उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूंगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप पर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली कभी यही है बिटवीन।
1: सागर साहब लिख रहे थे?
0: कोई नहीं, कोई किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। उनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं। तभी इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे,
1: हाँ, वो
0: रमन इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखे थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, उनकी भी आ जाते बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी।
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहां पर बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहां जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो कब बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहे तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: ज्यादा हुई, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ
0: लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश जी से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में

0: आने में फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, तो गाने वाले अब तब उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है। बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर होने थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उतना ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं,
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार
0: साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, तो कर लो, मान गए। यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे,
0: कहानी ढूंढ रहे, क्या बनाए वो सब्जेक्ट वो तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग गए।
1: हाँ हाँ,
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ,
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज अ राइटर। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया। जी
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, कभी पिक्चर बनाते वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट में यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरी सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोड़ को भी सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर का डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉट, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से। जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कम्प्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कम्प्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ, तो तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे

0: कन्विंस करेंगे 27 टीम से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने, तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते सुनाते, तो फिर रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बापे,
0: उनका स्टाइल है जो सुनिए इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 24 सीन तो पूरे क्लियर थे वो सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आए, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी

0: देखा अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे। कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला करूंगा।
1: बाबा,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो 13 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया।

0: रखा, उसमें पंडरी जुक्कर का भी शेयर था 5%।
1: बाबा
0: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो जय जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
1: जी जी जी गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे, उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले लूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी, जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाले भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
1: प्रदीप को लेके,
0: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही, लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे, तो भाई उनको वो तो रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बताया,
0: दिलीप साहब को बता दी।
1: ओहो गजब,
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
1: हाँ,
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ।
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी वो वहाँ के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
1: अच्छा
0: यारा,
1: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
0: सागर यारा
1: किताब में आई,
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उनसे बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज पसंद नहीं आएगी मैं कहूंगा, कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहले जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: ये ऐसे फिल्म करने का, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी की हम प्रोडक्शन की, प्रोड्यूस की, तो सबका

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ। बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दी,
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है।
0: जी।
1: जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था।
0: जी।
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी।
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ, फिर आ जाओ।

0: उन्होंने जिस अंदर को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन था, आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
1: जी,
0: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म है, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे है, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटे पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते, उनको बोलते ये बात, वो सोचे अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमने सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझे कहा, वो मुझे रमेश बोला थे, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके।
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात करी, दोनों वहां आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चाहे चावला साहब, ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए, उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहां से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके जो मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहां बुलाया गया लोकल, उस जगह नहीं, उनको वहां पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहां रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: है पहेली हाय, कभी तो हंसाए।
1: तो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ।
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो। तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बापरे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी देखता है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टारकास्ट,
1: बड़ी स्टारकास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूंगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते, शिमला शूटिंग हो, वहां नॉर्थ में शूटिंग हो, के जहां पे बोला जो जिस तरह लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की। क्या हुआ सब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी

FM 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद प्रोग्राम युववाणी में। दोस्तों, आज का दिन समर्पित है उस शख्सियत को जो बिना किसी शर्त के हमें प्यार करती है, हमारा ख्याल रखती है, हमारी प्यारी माँ, जिसके होने से घर घर लगता है, जिसकी छांव में हर मुश्किल आसान लगती है, वो होती है माँ। वैसे माँ इस शब्द को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा कठिन है और ना ही हम इतने काबिल है कि माँ के लिए कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी दिल की गहराइयों से इस मदर्स डे के मौके पर दुनिया की हर मां को हम सैल्यूट करते हैं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स।

अभी आपने आतिफ असलम की आवाज में फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो का ये खूबसूरत सा सॉन्ग सुना जो डेडिकेटेड है माँ के लिए। और आइए दोस्तों आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है और वो है नशीली दवाओं का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज की इस तेजी से भागती दुनिया में हर कोई लाइफ में स्ट्रेस, अकेलापन, गलत संगति से परेशान है। शुरुआत में नशे की शुरुआत अक्सर मजाक से, दोस्तों के दबाव से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें गंभीर लत बन जाती हैं। नशे की ये लत व्यक्ति के शरीर, मन और परिवार, उसके साथ साथ उसके पूरे भविष्य को खोखला कर देती है। आज दुनिया भर में लाखों लोग किसी न किसी प्रकार से नशे की गिरफ्त में हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग तेजी से इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। ये स्थिति बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि युवा किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि वही नशे की लत में फंस जाए तो समाज और देश दोनों का भविष्य प्रभावित होता है। दोस्तों पहले नशा केवल शराब, तंबाकू इन्हीं तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब कई प्रकार की नशीली दवाइयां और इंजेक्शंस का इस्तेमाल होने लगा है। कई युवा अपने स्ट्रेस दूर करने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। हर दिन देश भर में न जाने कितने लोग इस नशे के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। कई परिवार इस नशे के कारण तबाह हो जाते हैं। दोस्तों नशीली दवाओं के इस्तेमाल से बचने के लिए विषय पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुन लेते हैं एक गीत।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे नशीली दवाओं के इस्तेमाल और उससे होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में। दोस्तों, नशा एक ऐसी लत है जिसमें शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि नशा उसे खुशी या राहत दे रहा है, लेकिन असल में यह उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति को कमजोर कर रहा होता है। नशीली दवाओं का असर सबसे पहले दिमाग पर पड़ता है। हमारे सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होने लगती है और धीरे धीरे निर्णय लेने की शक्ति कमजोर होती है, और इसके साथ ही व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और व्यक्ति अपने परिवार और समाज से दूर हो जाता है। नशे से केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। यहां तक कि कई बार युवा अपराध और हिंसा की राह पर भी चल पड़ते हैं। दोस्तों, हर समस्या का समाधान संभव है। अगर कोई युवा नशे की लत का शिकार हो गया है तो उसे तानों और अपमान की नहीं बल्कि सहयोग और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।

परिवार का प्यार और अच्छे दोस्तों का साथ किसी भी व्यक्ति को नशे से बाहर निकाल सकता है। आज कई नशा मुक्ति केंद्र और अस्पताल भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। समय रहते इलाज और परामर्श लेने से जीवन को फिर से सही दिशा दी जा सकती है। दोस्तों, नशा कभी समाधान नहीं हो सकता, ये केवल जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। इसलिए जरूरी है हम सभी जागरूक नागरिक बने और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। इसके साथ ही युवाओं को चाहिए कि वे अपने जीवन में सकारात्मक आदतों को अपनाएं, अपनी एनर्जी अच्छे कार्यों में लगाएं और नशे से दूर रहें। तो दोस्तों, आज की हमारी इस चर्चा पर यही लगाते हैं पूर्ण विराम और बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर और सुनते हैं प्रोग्राम का अगला सॉन्ग।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ टिप्स। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया चेहरे से नहीं बल्कि पर्सनालिटी को याद रखती है। इंसान की असली पहचान केवल उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी सोच, व्यवहार और उसके कॉन्फिडेंस से बनती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी अपने व्यक्तित्व को उभारना, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, लोगों से बात करने का तरीका, अपनी प्रस्तुति का तरीका और ऐसी ही बहुत सी चीजों को उभारना होता है, निखारना होता है। अच्छी

पर्सनालिटी को देखकर हर कोई इम्प्रेस होता है। किसी से पहली बार मिलना हो या फिर इंटरव्यू देना हो, अच्छी पर्सनालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी टिप है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें। साफ और धीरे बोले, साथ ही सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुने और अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें, हर दिन कुछ नया सीखते रहें, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों, पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों की कंपनी में रहें। दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और भी जरूरी टिप्स आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुन लेते हैं एक और दिल को छू लेने वाला ये सॉन्ग।

तो दोस्तों हम बता रहे थे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ जरूरी टिप्स। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता। हर दिन के कुछ छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स लंबे समय में बड़ा बदलाव लाते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। इसके साथ ही अपने ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव करें। महंगे कपड़े जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी साफ सुथरे कपड़े जरूर पहने। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक जरूरी टिप है कंपैरिजन नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, हमेशा खुद की जर्नी पर फोकस करें, क्योंकि हर इंसान की क्वालिटी और स्पीड अलग होती है। इसलिए अपनी गलतियों पर हताश होने के बजाय धीरे धीरे उन पर काम करें। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और आइए एक बार फिर ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला सॉन्ग।

0: दोस्तों, अब वक्त है कुछ ज्ञान भरी बातों का। और आज हम आपको भारत की उस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी देंगे जिसे पूरी दुनिया भारतीय कला और स्थापत्य का अनमोल खजाना मानती है, और वो है खजुराहो मंदिर समूह। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो अपने भव्य मंदिरों, अद्भुत मूर्ति कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये स्थान भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और प्राचीन वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है। हर वर्ष हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं और भारतीय कला की महानता को करीब से महसूस करते हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि उस समय यहां करीब 85 मंदिर थे, जिनमें से आज लगभग 20 मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म की आस्था और भारतीय शिल्प कला के अद्भुत संगम को दर्शाते हैं। खजुराहो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बारीक नक्काशी और पत्थरों पर उकेरी गई जीवंत मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में देवी देवताओं, संगीत, नृत्य, युद्ध, प्रेम और सामान्य जीवन के अनेक दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ का कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर भी अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल खजुराहो केवल ऐतिहासिक स्थल ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी है।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

और आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज के हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी सॉन्ग।

तो इसी के साथ दोस्तों वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके मनपसंद प्रोग्राम युववाणी पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। शाम के 5:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में।

नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम नन्ही दुनिया आप सुनेंगे शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर सुनेंगे जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:50 पर।

किसान साथी अपना कार्यक्रम कृषकों के लिए सुनेंगे शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत।

गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादों के स्वर।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

विविध भारती की राष्ट्र सेवा से कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। विविध भारती की राष्ट्र सेवा से कार्यक्रम आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम ढलती जाए रात।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं रविन्द्र जैन और साथियों द्वारा गाए इस भजन के साथ।

रविंद्र जैन और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे भजन, और इसी भजन के साथ आज का हमारा कार्यक्रम गोधूली यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। शाम के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

नन्ही दुनिया कार्यक्रम सुनने वाले हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल श्रोताओं को आपकी नीलू दीदी का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज है 10 मई यानी मदर्स डे, तो आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही नमन देश की उन सभी माताओं को जो वात्सल्य ममता की मूरत ही नहीं होती बल्कि वक्त पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अदम्य साहस के साथ कहीं दुर्गा तो कहीं भवानी का रूप भी धारण कर सकती हैं। माँ एक एहसास जो शब्दों में बयां होने का विषय है ही नहीं, जिनकी छुअन जिनका स्पंदन हमें एक नई ताजगी नई स्फूर्ति से भर देता है, क्योंकि माँ सिर्फ मंदिर की मूर्तियों में ही नहीं होती बल्कि हम सबके घर को मंदिर बनाने वाली माँ में भी होती है, जिनसे हमारा घर स्वर्ग होता है, हम होते हैं हमारा सारा संसार होता है। तो आइए बच्चों, सभी मातृशक्ति को नमन करते हुए हम सुनते हैं उन्हीं के लिए ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की बात। हमारी आज की बात का विषय है संस्कार का प्रथम सोपान माँ। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, ये मातृवंदना सिद्ध करती है कि माँ का एक स्वरूप, जहाँ शक्ति स्वरूपा दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर हमारी माँ त्याग, करुणा, ममता और वात्सल्य की प्रतिमा के रूप में भी पूजनीय होती है। माँ ये कोई एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि इस छोटे से शब्द में एक पूरा संसार, एक पूरी सृष्टि समाई होती है, जहाँ से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। माँ वो प्यार भरी छांव है जिसकी गोद की शीतलता हमारे सारे दुखों, हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देती है, जिसका स्पर्श मात्र हमें सुख की अनुभूति कराता है। प्यारे बच्चों, माँ को माता, जननी, मात्र, अम्मा, जन्मदात्री, धात्री और प्रसू आदि ऐसे कितने ही नामों से पुकारें, पर सार रूप में एक ही शब्द हमारे समझ में आता है, वो है प्रेम, जो अनमोल है, अतुलनीय है। रामायण में स्वयं भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हमारी जननी, हमारी माता और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। प्यारे बच्चों, मातृ दिवस माँ को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष मई के महीने में दूसरे रविवार को मनाया जाता है। 1912 में इसकी शुरुआत अमेरिका से मदर्स डे के रूप में हुई थी। एना जर्विस एक प्रतिष्ठित अमेरिकन एक्टिविस्ट थी, जो अपनी माता से बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी माँ के प्रति प्यार सम्मान जताने के लिए इस दिन की शुरुआत मदर्स डे के रूप में की थी और ये दिन समर्पित किया अपनी माँ के लिए। इसीलिए ये दिवस खास तौर पर समस्त माताओं, मातृत्व शक्ति के लिए, पारिवारिक और उनके आपसी संबंधों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये हुई हमारी आज की बात। आइए फिर से हम चलेंगे संगीत की दुनिया में और हमारे प्यारे बच्चों को सुनाएंगे ये प्यारा सा गीत।

0: प्यारे बच्चों, अब हम आपको मिलवाते हैं आपके नन्हे मुन्ने दोस्तों से और आपको सुनाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम बालमुख से। आज हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं कुछ नन्हे नन्हे बच्चे, अपनी रचनाएं वो हमें सुनाएंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं बच्चों के मुंह से उनकी इन प्यारी रचनाओं को। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: सबसे पहले सुनते हैं हम, आपका नाम बोलिए।
2: मेरा नाम काजल है।
0: बहुत अच्छा नाम है काजल आपका। क्या सुनाएंगे आप हमें?
2: कविता।
0: कविता सुनाएंगे, चलिए सुनाइए।
2: देश हमारा भारत प्यारा, जग में है यह सबसे न्यारा। शीश मुकुट नगराज विराजे, पावे को सागर जल धोता। झरने नदियों का शीतल जल, इसके प्राणों की सिंचिता करता। बाग बगीचे यहाँ आग्नित, फल फूलों की भरमार है। जीव जंतुओं का सुंदर सा संसार है। देश की माटी हमको प्यारी, इसमें सोना उपजान है। अपनी मेहनत के बल पर ऊंचा इसे उठाने हैं। देश हमारा भारत प्यारा, जग में है ये सबसे न्यारा।
0: वेरी गुड काजल, देश की कविता बहुत अच्छी है आपकी। वास्तव में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा जो भारत देश है वास्तव में अपनी सुंदरता को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर और यहाँ की शौर्यता को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमारी मेहनत से ही हमारे देश का नाम रोशन हो सकता है, इसीलिए आप खूब मेहनत करके पढ़ेंगे और अपने देश का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। पढ़ोगे ना आप मन लगा के? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हमारे साथ हैं, आपका नाम बोलिए।
3: विकास।
0: विकास, विकास आप क्या सुनाने वाले हैं हमें?
3: प्रार्थना।
0: प्रार्थना सुनाने वाले हैं, चलिए सुनाइए।
3: हे प्रभु दया का दे दो दान, पढ़ लिख कर हम बने महान। श्रद्धा से हम पूर्ण हो, माता पिता के सेवक हो। नहीं टूट कर हम करे प्रणाम, पढ़ लिख कर हम बने महान। दीन दुखी की सेवा करना, मित्रों से मिलजुल कर रहना। करे धर्मात्मा होकर दान, पढ़ लिख कर हम बने महान। गंगा सा पावन मन हो, ऊंच नीच में भेद दूर हो। करे जन जन का हम सम्मान, पढ़ लिख कर हम बने महान।
0: विकास, आपने भी हमें बहुत अच्छी प्रार्थना सुनाई है। भगवान से वरदान हम मांग रहे हैं कि हे भगवान, पढ़ लिख करके हम महान बने और हमारे अंदर सहयोग का भाव हो, हम दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करें। तो ये बहुत अच्छा गुण है बच्चों कि हमें सबका सहयोग करना चाहिए और सबकी सहायता करनी चाहिए। जो भी गरीब हैं, बेचारे मजबूर होते हैं, तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। करोगे आप सबकी सहायता?
2: जी दीदी।
0: थैंक यू। चलिए अब हमारे साथ में है, आपका नाम बोलिए।
4: मोनिका।
0: मोनिका, मोनिका आप क्या लेकर आए हैं?
4: कविता।
0: कविता सुनाना चाहते हैं?
4: जी।
0: चलिए सुनाइए।
4: मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन तुम किंतु इतना कर रहा। फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा। फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, मन समर्पित प्राण अर्पित। रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दू तलवार को, लाऊं न देरी। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित। चाहता हूँ कुछ देश की धरती, तुझे और भी दूँ। तोड़ता हूँ मुँह का बंधन, क्षमा दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। यह सुमन लो, यह चमन लो, नीड़गत रण तरण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ।
0: मोनिका, आपने भी

0: बहुत बहुत अच्छी कविता हमें सुनाई है, जिसमें मोनिका हमें बता रही है कि हे देश की धरती, हमारा मन, हमारा तन और हमारा पूरा जीवन आपको समर्पित है, लेकिन हमारे पास और भी कुछ हो तो वो भी हम अपनी धरती को समर्पित करना चाहेंगे। बच्चों, समर्पण एक बहुत अच्छा भाव होता है और जब हम किसी के लिए अपनी इच्छाओं का, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं तो यहीं से शुरू होता है हमारा एक बहुत अच्छा जीवन। तो दूसरे के हित के लिए त्याग का, समर्पण का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है बच्चों?
1: जी दीदी।
0: और किसी को सुनाना है कुछ?
2: हाँ दीदी।
0: अच्छा काजल, आपको सुनाना है, क्या सुनाओगे आप?
2: हम नन्हे नन्हे बच्चे कविता।
0: अच्छा, कविता सुनाना चाहते हो, चलो सुनाओ।
2: हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, अपनी धुन में जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उठाएंगे, अपना पद कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, जननी की जय जय गाएंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उठाएंगे।
0: काजल की दूसरी कविता भी बड़ी प्यारी है कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी हम हौसलों के पक्के हैं, यानी कि हम छोटे होने के बावजूद भी अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं। देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी धरती के लिए आपको निश्चित रूप से कुछ करने का भाव मन में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों?
3: जी दीदी।
0: चलिए फिर आपसे कभी दोबारा हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।
3: जय हिंद।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

प्यारे बच्चों, समय हुआ है हमारी बाल कहानी का। हमारी बाल कहानी का विषय है गुब्बारे पर चीता। तो बच्चों, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक रोमांचक कहानी, जो हमें ये शिक्षा तो देती ही है, साथ ही ये सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में हम डरे नहीं बल्कि लड़ने का हौसला भी रखें। तो बच्चों, बलदेव नाम का एक लड़का था। अपने दोस्तों के साथ वो जाता है सर्कस देखने।

देखने। वहां जानवरों के करतब दिखाए जा रहे थे। सर्कस में एक चीता पिंजरे से निकलकर भाग जाता है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अपनी जान बचाने के लिए बलदेव एक उड़ते हुए गुब्बारे के टोकरे में कूद जाता है और उसकी ये बदकिस्मती थी कि वह चीता भी उसी टोकरे में आ जाता है। कहानी में रोमांचक मोड़ तब आता है जब गुब्बारा तेजी से ऊपर उठने लगता है तो डर के मारे चीता अपना आपा खो देता है और बलदेव पर हमला करने के बजाय वो चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है। लेकिन बलदेव भी डर रहा था, लेकिन वो क्या करता है, अपनी चतुराई से परिस्थिति का सामना करता है। उसने पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोलने से वह नीचे की तरफ धरती पर आ जाता है, तो वो ऐसा ही करता है। गुब्बारा नीचे आ जाता है और दोनों की जान बच जाती है। तो प्यारे बच्चों, कहानी थी छोटी लेकिन देखिए हमें शिक्षा दे रही है निडरता, चतुराई और मुसीबत के समय में शांत रहने की सीख। और साथ ही साथ हमें ये सीखने को भी मिल रहा है कि हमारे द्वारा सीखा गया, ग्रहण किया गया ज्ञान हमें जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत से उबरने का साहस और संबल भी प्रदान करता है, क्योंकि ग्रहण किया हुआ ज्ञान, सीखी हुई बातें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो प्यारे बच्चों, ये हुई हमारी बाल कहानी। आइए चलिए फिर से हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: और बच्चों, अब समय हुआ है हमारे सामान्य ज्ञान का। तो 15 मई को हम मनाने वाले हैं विश्व परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, जिसका उद्देश्य होता है समाज में परिवार के महत्व, उनके सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक योगदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। किसी भी राष्ट्र की प्रथम इकाई, प्यारे बच्चों, परिवार ही होता है। तो यह दिन परिवार के साथ, सदस्यों के साथ समय बिताने और रिश्तों को मजबूत करने का एक खास अवसर होता है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी जीवन शैली इतनी व्यस्त बन चुकी है जिसमें हमें अपनों के साथ ही समय बिताने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। तो ये दिवस परिवार के मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग के बारे में चर्चा करने का, एक दूसरे के साथ समय बिताने का सुअवसर प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में एक प्रस्ताव के माध्यम से 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित करके की गई थी, और आधिकारिक रूप से 1994 में ये दिवस मनाया गया। 2026 में विश्व परिवार दिवस की थीम रखी गई है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण, जो बाल विकास के लिए परिवार केंद्रित नीतियों पर जोर देती है। साथ ही मिलकर खाना बनाने, खाने, बाहर घूमने, खेल खेलने, मनोरंजन करने, अपनों के साथ वक्त बिताने जैसे कार्य इस दिवस की गतिविधियों में शामिल किए गए हैं। इस दिवस को वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इससे विश्व में सद्भावना का और एकता की भावना को बढ़ावा मिले। प्यारे बच्चों, ये हुई संक्षिप्त जानकारी हमारे विश्व परिवार दिवस के बारे में, जिसे हम मनाने वाले हैं 15 मई को। और आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारा अगला गीत।

प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले रविवार को फिर किसी नई जानकारी और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए आपकी दीदी को दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।

कार्यक्रम नन्ही दुनिया एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। शाम के 6:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 6:50 पर सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। तो कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभी से पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक केंद्रों के समर्थन से किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और धरती को नुकसानदायक रासायनिक उर्वरकों से बचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रति बूंद अधिक फसल पहल को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, बिजली की बचत और सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समारोह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन होगा, साथ ही पुनर्निर्मित मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए ऐसे अवसर सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। राज्यस्तरीय कार्यक्रम जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल होंगे। कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही राष्ट्रीय आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली

0: दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति, रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते पर चर्चा की गई। साथ ही राजस्थान के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा तथा शहरी विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। श्री शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात कर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्री यादव ने सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें जन्म देने वाली माता और धरती माता दोनों के प्रति कृतज्ञ रहना आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली क्षेत्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अलवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
1: तो राम जल सेतु परियोजना है, उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराना का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक और नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से पेपर लीक किया गया और फर्जी डिग्री तथा प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। एडीजी ने बताया कि पेपर लीक मामले में शेर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके रिश्तेदार विजय डामोर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी कटारा के आरपीएससी सदस्य बनने की नियुक्ति प्रक्रिया और उसके द्वारा किए गए पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
2: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के लिए राजस्थान एसओजी को जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए इस मामले में सभी जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 मई को ये परीक्षा पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। 7 मई को परीक्षा के बारे में कथित कदाचार गतिविधियों के बारे में एनटीए को सूचना मिली। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए ये सूचनाएं केंद्रीय एजेंसियों को भेज दी गई। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी तालमेल पर भी चर्चा की। गृह मंत्री ने लंबी अवधि के बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति को भी जांचा। इनमें अहम बुनियादी परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान की वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जनजागरूकता, जानमाल के नुकसान को रोकने और आवश्यक राहत सामग्री तथा दवाओं के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया गया।

0: मौसम। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज गर्मी और लू को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यह दिन के साथ ही रात में भी हीट वेव का असर रह सकता है। आज भी इन जिलों में लू का प्रकोप रहा। इन जिलों में दिन का पारा औसतन 44 से 45 डिग्री सेल्सियस मापा जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर, जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी की चपेट में हैं। इधर पूर्वी राजस्थान के जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सीकर, टोंक और झुंझुनू में धूप की तपिश और उमस लोगों को परेशान कर रही है। सुबह शाम हल्की हवाएं चलने से मामूली राहत मिल रही है। कल से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले में पशुओं में मुंहपका, खुरपका बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की ओर से ये अभियान 15 मई तक चलेगा। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने बताया कि जिले में अब तक 2.5 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण करवाकर इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है।
1: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें, ताकि ये पशुओं को नुकसान न पहुंचा पाए।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे बाड़मेर से हरिद्वार के बीच कल से विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये सेवा सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये रेलगाड़ी बाड़मेर से हर सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी। ये विशेष ट्रेन 16 जुलाई तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच हो रहे हैं। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जारी है। चेन्नई में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ की टीम ने सीएसके को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य दिया है। वहीं दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देशभर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अविनाश मल्होत्रा ने तैयार किया है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों अलवर पहुंचे। उन्होंने मत्स्य यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने 71 मेधावी छात्रों को उपाधि और मेडल प्रदान किए। इनमें 37 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 28 PhD उपाधियां शामिल हैं। राज्यपाल ने समारोह में कुल 44,293 छात्रों को डिग्री और उपाधि प्रदान की। बीते दिनों केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आमजन और विभिन्न संस्थाओं से लाइब्रेरी के लिए पुस्तक दान करने की अपील की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों जिले में भी SI पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 2 दिन तक 2-2 पारियों में हुई इस परीक्षा के लिए कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से सख्त निगरानी की गई। साथ ही डमी कैंडिडेट पकड़वाने या नकल की सूचना देने वालों के लिए 1,00,000 रूपये के इनाम की घोषणा भी की गई। अलवर में नगर निकाय चुनाव के लिए जिले के सभी वार्डों की निर्वाचक नामावलियां

0: तैयार की जा रही है। नगर निगम के 65 वार्डो के लिए निर्धारित सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रगणक के पास उपलब्ध फोटो युक्त मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार और योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पिछले दिनों जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 575 लाभार्थियों के पंजीकरण किए गए और 243 आवेदकों ने मौके पर ही वेंडर का चयन किया। शिविर के दौरान लाभार्थियों को इंडक्शन कुक टॉप भी वितरित किए गए। ग्राम रथ अभियान के तहत जिले में पिछले दिनों विकास रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। ये रथ जिले के अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और थानागाजी में विभिन्न क्षेत्रों में 15 दिनों तक संचालित होंगे। इन विकास रथों के माध्यम से 13 सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। जिले में संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम और समारोह आयोजित हुए। इसी कड़ी में जेल सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक मैराथन और स्वास्थ्य दौड़ के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। अंबेडकर छात्रावास में विचार गोष्ठी और सामुदायिक भवन में जनसभा का आयोजन हुआ। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर भी जिले में कई कार्यक्रम हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर निगम कार्यालय सहित सभी उपखंड कार्यालयों में महात्मा ज्योतिबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर समाज के विकास का प्रण लिया गया। सरिस्का बाघ परियोजना की बफर रेंज में इन दिनों बाघिन ST19 और उसके 4 शावकों की अच्छी साइटिंग देखी जा रही है। सरिस्का में वर्ष 2008 में बाघों के पुनर्स्थापन के बाद अब यहां बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। जिले में पिछले दिनों मौसम के कई रूप देखने को मिले। कभी तेज गर्मी तो कभी आंधी बारिश और ओलों का दौर चला। फिलहाल जिले में एक बार फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के समय अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर न निकले, साथ ही तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इधर जिला प्रशासन भी तेज गर्मी से लोगों के बचाव के लिए प्रयासरत है। वहीं नगर निगम की टीम शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में भाग लेने आए पोलैंड, थाईलैंड, स्लोवाकिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी देशों के टूर ऑपरेटरों के दल ने पिछले दिनों सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने इको टूरिज्म गतिविधियों और टाइगर सफारी का भी लुत्फ उठाया। सरिस्का में पिछले दिनों वन्य जीव गणना संपन्न हुई। इस बार बघेरों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा लंगूर, बंदर और नील गाय की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाजरी भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सु कारगर बतायो। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर आज झारखंड महादेव मिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरा मात है, राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रस आगे रात भी घने गरम। समाचार आ रहे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाबा खातर सगलाऊं एकजुट हो बारी अरज करी। वे कया के राष्ट्र निर्माण में समाजरी भागीदारी राजनीतिक व्यवस्थाओं बत्ती कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग री 45वीं जयंती जलसा में बोल रहा। वणा संस्थान में नया बणिया ध्यान मंदिर उद्घाटन भी करो। इन मौके श्री मोदी पर्यावरण खातर जिम्मेदारी नौजवाना

0: रोजगार और आंतरिक शुचितारी भावना रहसा गए राष्ट्र बनाबामाए सगड़ाओं मिलर काम कर बारी अरज करी।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री कया के आध्यात्मिक केंद्रारा समर्थनों कास्कारा ने प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवा और धरते ने नुकसान देबा वाला रासायनिक उर्वरक सु बचाबा माए इमदाद मिल सके है। देशभर माए काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। सोमनाथ मंदिर माए विया हमला रा 1000 बरस और मंदिर पुनर्निर्माण रा 75 बरस पूरा हो बारे मौके ओ पर्व मनायो जा रियो है। राष्ट्रीय जलसो गुजरात रा सोमनाथ मंदिर माए अमृत पर्व रा रूप माए मनायो जा रियो है। प्रधानमंत्री श्री मोदी री मौजूदगी माए काल ध्वज पूजा वेला अमृत पर्व रे मौके पुनर्निर्मित मंदिर रा शिखर रो 11 तीर्थ स्थलारा जलों अभिषेक करियो जावेला। प्रधानमंत्री श्री मोदी कया के विकसित भारत खातर इन भात रा मौका नुवी ऊर्जा देवे है।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुरा झारखंड महादेव रामिंदर माय वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जलशामाए शामिल वेला। कला और संस्कृति महकमारी शासन सचिव सुचित त्यागी बतायो के इन मौके प्रदेश भर माए शिव मंदिरा माए खास धार्मिक कार्यक्रम वेला, सागे ही राष्ट्रीय आयोजन रो सीधो प्रसारण भी करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा माथेरिया वणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुलाकात करी। इन दौरान राज्य माए जल जीवन मिशन री प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और जमुना जल समझौता माथे चर्चा करी गई। सागे ही राजस्थान खातर न्यारी न्यारी महताऊ सिंचाई और पेयजल परियोजना वा खातर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सु भी भेंट करी। इन दौरान राजस्थान माए ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा और शहरी विकास सु जुड़िया विषय माते बातचीत हुई। वणा भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष सु भी भेंट कर हाल ही माए विया विधानसभा चुनाव माए पार्टी री जीत री बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माए साइकिल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। रैली माए बड़ी तादाद माए महिलावा भाग लीना। श्री यादव सगड़ा ने मातृ दिवस री शुभकामना मा देता थका कया के महाने जन्म देबा वाली माँ और धरती माता दोनों रो आभारी रहनु चाहिए। आरे बिना मिनख रो अस्तित्व नहीं रह सके है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अलवर खैरथल तिजारा और कोटपुतली हलकारा करीब 10,000 करोड़ रूपया लागत वाली विकास परियोजना वारी समीक्षा करी। अलवर माए प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका श्री यादव कया के इन विकास कामा ने तय बगतरी मियाद माए पूरो करियो जावेला।
2: तो राम जल सेतु परियोजना है, उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराना का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: शिक्षा मंत्रालय गर्मी री छुट्टियां माए देशभर स्कूल माए भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर राखेला। एक हफ्ता माए ओ शिविर भारतीय भाषा वामाए बुनियादी संवाद कौशल सिखावा, शब्दा ने जानवा, आपरो परिचय देवा और रोजमर्रा जीवन री बातचीत और संस्कृति री सराहना माते केंद्रित वेला। इनरो मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे मुजब

0: समावेशी और समान शिक्षा रा दृष्टिकोण ने बढ़ावो देनो है। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 माए पेपर लीक और नकल गिरोह रो खुलासो वियो है। एसओजीरा एडीजी विशाल बंसल आज जयपुर माए प्रेस वार्ता माए बताया के भर्ती परीक्षा माए मेल मिलापो पेपर लीक करियो गयो और फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट जरिए नौकरी हासिल करबारी कोशिश करी गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव पूछताछ माए पेपर लीक री बात कही। एडीजी बतायो के पेपर लीक मामला माए शेर सिंह भी गिरफ्तार करियो गयो है। आरपीएससी रा पहला आला सदस्य बाबूलाल कटारा और उनका रिश्तेदार विजय डामोर ने भी गिरफ्तार करियो गयो है। एसओजी कटारा और आरपीएससी सदस्य बनबारी नियुक्ति प्रक्रिया और उन रिकानी करिया गया पेपर लीक से जुड़िया नेटवर्क री भी जांच करी जा रही है।
1: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज की बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इन बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियां खातर राजस्थान एसओजी री जांच माए इमदाद करी है। एनटीए इन मामला माए सगड़ा जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए रिकानियों जारी बयान माए कहो गयो है कि 3 महीने आ परीक्षा पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल रे तहत राखी गई ही। 7 महीने परीक्षा रा 12 माए कथित कदाचार गतिविधियां रा 12 माए एनटीए ने सूचना मिली। एंड्रे पछे जरूरी कार्यवाही खातर ये सूचना केंद्रीय एजेंसियां ने भेज दी गई। फिलहाल आरी जांच चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू रा हालात से निपटबा खातर देश ने तैयारियां की समीक्षा बैठक करी। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह सरकारी एजेंसियां ने तैयारियां रो जायजो करो। शुरुआती चेतावनी प्रणालियां संसाधन री तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा करी। गृहमंत्री देश में करिया जा रिया दीर्घकालीन बाढ़ निवारण उपाय री प्रगति री भी समीक्षा करी। जनमाय महताऊ ढांचागत परियोजना मानव बचाव नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान माए वैज्ञानिक प्रगति भेली है। बैठक में जन जागरूकता जान माल और नुकसान ने रोकबा खातर निर्माण कार्यक्रम जरूरी राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियां रा चावता भंडार ने पक्को करबा माथे भी चर्चा करी गई। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और आरएसआर रा हल्का माए हीट वेव रो असर बणियोड़ो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिना खातर पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला माए तेज गर्मी और लू खातर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है। 8 दिन रसा गए रात माए भी हीट वेव रो असर रह सके है। आज भी आ जिला माए लू रो असर रियो। जिन जिला माए दिन रो पारो करीब 44-45 डिग्री सेल्सियस मापियो जा रियो है। बठीने चित्तौड़गढ़ बीकानेर उदयपुर जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी री चपेट माए है। अठीने पूर्वी राजस्थान रा जिला माए बतो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज करियो जा रियो है। हालांकि जयपुर अलवर दौसा करौली सीकर टोंक और झुंझुनू माए धूप री तपिश और उमस लोगों ने परेशान करी है। सुहारे सिंजा हल्की हवा चालबासु मामूली सी राहत मिल रही है। कालू राज्य माए नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारा आसार है। इनसु कई जिला माए और बिरखा होबारो अंदाजो है। सवाई माधोपुर जिला माए ढांडा ढोरी मुंहपका खुरपका बीमारियां बचाबा खाटा टीकाकरण करियो जा रियो है। पशुपालन महकमा री कानियों ओ अभियान 15 मई तय चालेला। महकमारा संयुक्त निदेशक डॉ राजीव गर्ग बताया कि जिला माए हाल ताई 2.5 लाखों बत्ता पशुआरे टीका लगाया जा चुकिया है। वणा पशुपालकों गोवंशो टेम माथे टीकाकरण करवार इन अभियान माए भागीदारी निभावारी अरज करी है।
2: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें ताकि ये पशुओं को नुकसान न पहुंचा पाए।
0: उत्तर पश्चिमी रेलवे बाड़मेरू हरिद्वार बीच

0: कालू खास रेलगाड़ी चलावेला और सेवा सप्ताह माए दो भगत चालेला। उत्तर पश्चिमी रेल वारा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन रे मुजब ये रेलगाड़ी बाड़मेरू हर सोमवार और गुरुवार ने मुहैया रेवेला। यहाँ खास गाड़ी 16 जिला तई चालेला। और अब आखिर माए खास खबर एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाज री भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सु कारगर बताया। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर राज झारखंड महादेव मिंदर में वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली रा दौरा मत है, राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रसागे रात भी घनी गर्म। इंद्र सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठाई पूरो वियो। माको आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम कृषकों के लिए।

कार्यक्रम कृषकों का सुनवाला सभी किसान भाई बहना को था कि फोरंती बैंडरो गणो गणो राम राम। किसान भाइयों आज आप चर्चा करेंगे अपना कार्यक्रम के मायने कि जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है उसको काई काई महत्व हो चे और साथ ही आप दूसरी अपनी जो चर्चा हो चर्चा के मायने आप बात करेंगे ग्रीष्म काल में नवजात बछड़ान की उचित देखभाल किसान करनी चाहिए और इसके साथ ही आप अपनी अगली चर्चा रहेगी भेड़ बकरी पालन लाभ का सौदा। तो अपना कार्यक्रम की शुरुआत करें ग्रीष्म काल में नवजात बछड़ान की उचित देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो किसान भाइयों किसानन को जीवन में बहुत मुश्किल हो चे वे लंबा समय तक अपना खेतन के मायने लंबा समय तक जो काम करे चे वहां को पूरा ध्यान सदैव फसलन में लगे रहे चे लेकिन वे अपनी जो कड़ी मेहनत है कड़ी मेहनत से जीवन व्यतीत करे चे। किसाना की प्रगति के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और नवजात बछड़ान से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में बात करा। तो गर्मी के मायने जो नवजात बछड़ा बछड़ी रहे चे वहां से जुड़ी हुई जानकारी किसान भाई हमेशा ध्यान रखे कि जानवर की तो उचित देखभाल कर ले चे परंतु जो छोटा नवजात पशु जिन शिशु है वे वहां की उचित देखभाल कौन कर पावे जिकी वजह से इनकी मृत्यु को डर भी ज्यादा हो चे। लिया गर्मी को जो प्रकोप है उसको ध्यान में रखते हुए नवजातन को उसे बचावा के लिए वहां की उचित देख रेख और प्रबंधन कैसे तरीका से करना चाहिए पापा करा चर्चा। किसान भाइयों गर्मी के महीने तापक्रम में लगभग 46-47 के करीब रहे चे तो ई मौसम में बड़ा जानवर तो अपना आप ही को एडजस्ट कर ले चे परंतु जो छोटा गाय भैंसन का या भेड़ बकरीन का बछड़ा बछड़ी रहे चे उनके ऊपर ये तापक्रम को बुरा प्रभाव पड़े चे। तो इके लिए सबसे अच्छो यह होगो कि किसान भाई गाय भैंसन का छोटा बच्चा को हमेशा घर के अंदर या फिर बाड़ा के अंदर ही रखे यदि बाहर निकाले तो हमेशा छायादार जगह पर ही यहाँ को रखे। कोशिश करे कि जब 9 बज जावे तो उनके बाद छोटा बछड़ा बछड़ी इनको सुबह के टाइम बाहर न निकाले और अगर बाहर निकाले और न हो तो सुबह सुबह या फिर शाम को 7 बजे के बाद बाहर निकाले जब सूर्य देवता की तेज रोशनी न हो। दूसरी बात जहाँ पशु बछड़ान को बैठा हो तो वो जगह भी साफ सुथरी हो। कोशिश करे कि गाय भैंस का छोटा बछड़ा बछड़ी को साफ मेट जी पे 3-4 घंटा का अंतराल से पानी को छिड़काव करता रहना चाहिए ताकि उनके मायने नमी बनी रहे। अदरवाइज कच्ची मिट्टी की जो व्यवस्था है वो भी आप अपना छोटा जानवर के लिए कर सका जा अपना पशुन को बांधवा की जगह पे खुलो हो तो पेड़ की छाया के मायने भी बछड़ा बछड़ी को आप बैठा सका जा। एक विशेष ध्यान रखे कि इनको इस समय दूध को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे। किसान भाई कहीं करे कि मई जून के मायने दूध की पैदावार कम है जाते।

तो गाय भैंस का बछड़ा उनको दूध भी कम पिलाओ चे, लेकिन सही मात्रा में दूध यानी कि वजन का कम से कम 10% हिस्सा का हिसाब से तो दूध पिलाना चाहिए। आप बात करा कि अगर 40 kg बछड़ा बछड़ी के मायने वजन है वह तो 24 घंटा में वहां को 4 kg दूध पिलावो बहुत ज्यादा जरूरी है। ई मौसम के मायने खास ध्यान रखे कि पसीना बहुत आवे और पसीना आवासु शरीर के मायने जो नमक है वो बाहर निकल जाओ चे। तो किसान भाई छोटा बच्चा को जो भी चीज खिलावे पिलावे उके मायने कुछ मात्रा में नमक जानवरा को जरूर खिलावे। ईसु शरीर के मायने नमक की मात्रा कम कौन होगी। दूसरी बात है बछड़ा बछड़ी जो मिट्टी चाटे चे वो भी काफी हद तक कम में जाओगी। कोशिश करे कि गाय भैंस का बच्चा जब 15 दिन का है जावे तो हरी घास की पत्तियां उनका मुंह के आसपास रखे जिसु वहां को खावा की आदत पड़ जावे। नवजात के पास हमेशा ठंडो और स्वच्छ पानी उपलब्ध रहना चाहिए क्योंकि गर्मी के मायने निर्जलीकरण को खतरों ज्यादा हो चे। तो और कई चीजें देखो किसान भाई और भी है जिसे आपने नवजात बछड़ा बछड़ी रहे तो वहां की नाभि की देखभाल भी अपन को करनी चाहिए। जन्म के बाद नाभि को स्टेरिलाइज जो कैंची है उसे काटे और आयोडीन को या फिर टिंचर लगाकर उनको इन्फेक्शन से आप बचा सका जा। नवजात बछड़ा बछड़ी को नैला बासु बचे वहां का शरीर के मायने सिर्फ पानी को स्प्रे करे या गीला कपड़ा से वहां को पहुंचे। कोई भी असामान्य लक्षण है जैसे आया कि जानवर के मायने सुस्ती है कम दूध पी रिया है उनके ऊपर अपन को तुरंत मतलब कार्रवाई करते हुए पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। याची किसान भाइयों अपनी ग्रीष्म काल में नवजात बछड़ा की देखभाल पे और अब सुना पाए प्यारो सो लोकगीत।

किसान भाइयों, अब बढ़ाओ अपनी चर्चा को आगे। अपने दूसरी जो चर्चा है, चर्चा को विषय रहेगा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार का काय काय महत्व हो। किसान भाइयों, राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल आपाई को कैसे कहा, जो देश की कृषि मंडी को ऑनलाइन जोड़कर एक राष्ट्र एक बाजार का रूप का मायने काम करे। यह किसान भाई को अपनी उपज को बेहतर मूल्य पावा, बिचौलिया को कम करवा, पारदर्शिता बढ़ावा और डिजिटल भुगतान का माध्यम से फसल का तुरंत भुगतान प्राप्त करवा के मायने मदद करे। आप बात करा बेहतर मूल्य प्राप्ति की, तो किसान भाई स्थानीय मंडी की बजाय राष्ट्रीय स्तर का खरीदारन को अपनी उपज बेच सके, जिस वहां को अपनी फसल को उचित और बेहतर मूल्य मिल जाओ। व्यापार में पारदर्शिता की बात करा तो ई नाम पे गुणवत्ता जांच और ऑनलाइन बोली की प्रक्रिया पारदर्शी हो, जिस किसाना को वहां का उत्पाद को सही मूल्य मिल जाओ। बिचौलिया से मुक्ति की बात करा तो यह एक ऐसी बाजार छे जो सीधो खरीददार और किसाना को आपस में जोड़े छे, जिसु बिचौलियान को जो हस्तक्षेप वह कम हो जाओ छे और किसाना को अधिक मुनाफा मिले छे। देशव्यापी बाजार तक पहुंच की बात करा तो किसान भाई घर बैठे या स्थानीय मंडी का माध्यम से पूरा देश की मंडी का जो भाव है वो देख सके छे और अपनी उपज को कहीं भी अपना हिसाब से बेच सके छे। डिजिटल और त्वरित भुगतान की बात करा किसान भाइयों, तो फसल बेचवा के बाद भुगतान डिजिटल रूप से सीधो किसान भाई इनका बैंक खाता इनके मायने आ जाओ, जिसु धोखाधड़ी को जो खतरो वो बिल्कुल कम होगा की संभावना रहे छे। गुणवत्ता आधारित मूल्य पे बात करा तो ई नाम मंडी के मायने वैज्ञानिक तरीका अनुसु ग्रेडिंग और गुणवत्ता को आकलन हो, जिसु अच्छी गुणवत्ता वाले फसल के लिए किसाना को अधिक दाम मिले छे। साथ ही बात करें किसान भाइयों कि किसान उत्पादक संगठना को मजबूती कैसे मिले, तो ईका माध्यम से छोटा किसान भी सामूहिक रूप से अपनी उपज को बड़ो हिस्सो आसानी से और बेहतर दामन पे बेच सके। मुख्य तिथि की बात करें, तथ्य की बात करें, तो किसान भाइयों 800 अधिक राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के मायने 1000 से अधिक मंडिया ही बाजार से जुड़ी हुई है। पंजीकरण की बात करा तो 1.75 करोड़ से अधिक किसान, 2 लाख से अधिक व्यापारी और 1 लाख से अधिक कमीशन एजेंट पे पंजीकृत है। फसलन की संख्या की बात करा किसान भाइयों, तो लगभग 175 से अधिक विभिन्न कृषि उत्पाद ही मंच के मायने बेचा जा रहा है। किसान भाइयों, यह योजना 14 अप्रैल 2016 को शुरू करी गई थी, जिसको मुख्य उद्देश्य कृषि विपणन में सुधार लाबो छे। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी जागरूकता के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बाजार को महत्व सभी किसान भाइयों को लगभग उठाना चाहिए। या ची अपनी कृषि जो बाजार है उसको महत्व बात, और आप सुन ले आप दूसरों लोकगीत।

किसान भाइयों, अभी सुने आपने लोकगीत और अब बढ़ा हम अपनी चर्चा को आगे। अपनी अगली चर्चा को विषय है कि भेड़ बकरी जो पालन है उनको लाभ को सोधो किसान भाई के लिए कैसे सिद्ध हो रही। किसान भाइयों, भेड़ बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्र के मायने कम निवेश में मांस, दूध, ऊन और खाद का माध्यम से बड़ी आय देवा वालो एक टिकाऊ व्यवसाय छे। यह व्यवसाय तेजी से बढ़वा वालो पशुधन के कारण अत्यधिक लाभदायक छे। हालांकि इक मायने चराई प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल और चारा की सही व्यवस्था को होवो जरूरी छे। अगर न होवे तो

कुछ नुकसान भी हो सके जे। अपा एक एक लाभन की बात करा अपा कम लागत की, तो एक भैंस की कीमत के मायने कम से कम 10 से लेर 12 बकरी अपा आसानी से खरीद सका जा, तो इके मायने लागत बहुत कम आवे और किसान भाई एक अच्छी मात्रा के मायने भेड़ बकरी खरीद कर एक अपने व्यवसाय अपने स्तर पे शुरू कर सके जे। दूसरो है तेजी से प्रजनन, बकरियां बहुत जल्दी विकसित हो चे और अक्सर अपन जुड़वा या 3-4 बच्चा देवा वाली बकरियां अक्सर देखा चाहे जिसु कही है कि किसान भाई की जो जानवर की बढ़ोतरी है वो जल्दी है बस वहाँ की आमदनी के मायने काफी हद तक सुधार है उसे। विविध उत्पादन पे बात करा तो भेड़ बकरी पालन सु मांस है दूध है ऊन है और खाद का माध्यम सु आपका कई स्रोत उपलब्ध अपा अपने स्तर पर कर सका चा। आसान बाजार की बात करा तो किसान भाइयों आसान बाजार सु तात्पर्य छे कि स्थानीय स्तरन पे भी गांव ढाणीन के मायने व्यापारी अगर आवचे तो वो बकरा बकरी या फिर बछड़ा बछड़ी आदि को आसानी से खरीद लीजे। कम श्रम और आत्मनिर्भरता की चर्चा करा तो भेड़ बकरी पालन के मायने किसान भाई श्रम की कम जरूरत पड़े छे और या भेड़ बकरी पालन वासु पालन सु सूखा प्रभावित क्षेत्र के मायने भी एक बेहतर आमदनी अपने किसान भाई प्राप्त कर सके जे। भेड़ों और बकरीन की कई ऐसी नस्ला हो चे जिनको दोहरो उपयोग हो चे और इनका इस्तेमाल को मांस है रेसा है या फिर दूध दोना का उत्पादन के मायने करे जा सके जे। पौष्टिक गुणा के साथ साथ किसान भाइयों भेड़ और बकरी आदिन को मांस स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करे जे। आपने ये चर्चा को आगे बढ़ावा इस पहला आप बीच में सुन लिया प्यारो सो लोकगीत एक और

किसान भाई और बड़ा अपनी चर्चा को आगे तो अपना अपना जो भेड़ बकरी पालन का लाभ के सौदा को चर्चा को आगे बढ़ाओ तो झाड़ी और खरपतवार का नियंत्रण पे बात करा तो किसान भाइयों भेड़ और बकरियां आदि को अनूठो चराबा का व्यवहार हो चे जे अवांछित झाड़ी और खरपतवार को चरबा में विशेष रूप से सहायक हो चे। इके अलावा चढ़ता समय लागे ये देखो कि त्यागे गए गोबर लाभकारी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम को मिट्टी के मायने वापस पुनर्चक्रित करे छे। जीसु घासन का पुनर्स्थापन में मदद मिले छे और चरागाह की जो उत्पादकता वो बढ़े छे। उपयोग में आसानी की बात करा तो भेड़ और बकरीन को आकार और वजन अन्य पशुओं की तुलना के मायने कम हो छे। यहाँ को संभालबो छाटबो और नियंत्रित करबो आमतौर पर आसान हो छे और गंभीर चोर आदि लगवा को खतरो भी यहाँ को कौन देवे। विविधता की बात करें तो छोटा पशु केवल छोटा जमींदारा के लिए ही लाभकारी सिद्ध हो चे, लेकिन ये उन बड़ी व्यवसायियों के लिए भी फायदेमंद हो सके चे जे अपना व्यवसाय के मायने विविधता लिया बचाओ चे। भेड़ बकरी छोटी घास और झाड़ी आदि को चयन करे चे जिसु एक साथ चरवा के मायने चरागाह की अधिकता को उपयोग हो चे। भेड़ और बकरियां आदि उत्पादकों को और भूमि मालिका के लिए एक अद्वितीय लाभ प्रदान करे चे। इनके मायने अन्य जानवर द्वारा खाया गया कम गुणवत्ता वाला चारा को पुनर्चक्रित करके दुबला पौष्टिक प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला दूध और उत्तम ऊन में परिवर्तित करवा की अनूठी क्षमता हो चे। इके साथ ही यहाँ को जो छोटो आकार व गर्मी सहन करवा की क्षमता और प्रजनन क्षमता वहाँ को एक बहुमुखी प्रजाति बनाओ चे जे छोटा पैमाना पर उत्पादकता से लेकर बड़ा पैमाना का फार्मा तक सभी आवश्यकताओं का अनुरूप हो चे। याची किसान भाइयों अपनी आज की चर्चा और अब सुन ले आप मौसम संबंधी हल्का बारे में बात है। तो आज को अपने न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। अब आज्ञा दो था कि फोरंती बहन ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषकों के लिए FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं उदित नारायण और आशा भोंसले की आवाजों में लगान फिल्म के गाने के साथ, जिसे कलमबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और धुन में पिरोया है AR रह।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में आप सुन रहे थे चलते चलते फिल्म का एक गाना। इस गाने को कलमबद्ध किया था जावेद अख्तर ने और धुन में पिरोया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से। इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और धुन में पिरोया है शांतनु मोइत्रा ने।

श्रेया घोषाल और एमजी श्रीकुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे भूल भुलैया फिल्म का ये गाना। इसे कलमबद्ध किया था समीर ने और धुन में पिरोया था प्रीतम ने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं के और शिल्पा राव की आवाजों में बचना ए हसीनो फिल्म से। इस गाने को कलमबद्ध किया है अवंती अनविता दत्त गुप्तन ने और धुन में पिरोया है विशाल और शेखर ने।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म का एक गाना। इस गाने को कलमबद्ध किया था कुमार ने और धुन में पिरोया था अमाल मलिक ने। और इसी गाने के साथ आज का हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। रात्रि के 8 बजने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं आशा भोसले की आवाज में इस गाने के साथ।

गुलाम अली की आवाज में आप सुन रहे थे तेरे शहर में गजल से इस गाने को। इसे लिखा था अशरत जयपुरी ने और धुन में पिराया था प्रद्युम्न शर्मा ने। और इसी गाने के साथ आज का हमारा कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादों के स्वर। कार्यक्रम का आगाज करते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में पेइंग गेस्ट फिल्म के एक गाने के साथ, जिसे कलमबद्ध किया है मजरूह ने और धुन में पिरोया है SD बर्मन ने।

आवाजों में। इस गाने को लिखा था भरत व्यास ने और धुन में पिरोया था सी रामचंद्रा ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के स्वर FM 101.5 MHz पर। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। इस गाने को कलमबद्ध किया है मजरूह ने और धुन में पिरोया है SD बर्मन ने।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ही गाना। और इसी गाने के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यादों के स्वर यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयम उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर

0: अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई।

0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है
1: कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें गीत।

सुने। कार्यक्रम का आगाज करते हैं जोनी मेरा नाम फिल्म के गाने के साथ। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है कुंदनवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और संजय मुरेम्बकर ने।

लता मंगेशकर की आवाज में जोनी मेरा नाम फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था कुंदनवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और संजय मुरेंबकर ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं बीवी नंबर वन फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है पांचोलास से भंवर सिंह जाधव ने।

बीवी नंबर वन फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे और इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया था पांचोलास से भंवर सिंह जादौन ने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं छोटा भाई फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है मथुरा उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन और व्योमिनी ने। सुनते हैं सबकी फरमाइश पर यह गाना।

छोटा भाई फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे और इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया था मथुरा उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन और व्योमिनी ने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं।

हैं राजा और रंक फिल्म से, और इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया और गीता रानी ने, साथ में है गगनदीप और गुड्डू। तो सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना।

लता मंगेशकर की आवाज में राजा और रंक फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और गुड्डू ने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं पड़ोसन फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह ने।

पड़ोसन फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया था जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह ने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं महान फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है कुंदनवाड़ी महाराष्ट्र से हरीश देशपांडे ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में महान फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था कुंदनवाड़ी महाराष्ट्र से हरीश देश पांडे ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं हम है राही प्यार के फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर से राजेंद्र सैनी ने।

हम है राही प्यार के इस फिल्म का एक गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर से राजेंद्र सैनी ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं राम लखन फिल्म से। ये सुनने के लिए हमें कॉल किया है उदयपुर से जगदीश माटा ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना।

रामलखन फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। और इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था उदयपुर से जगदीश माटा ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं प्रेम पर्वत फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है मध्य प्रदेश से उमाशंकर पटेल, प्रियांशी, नंदिनी, माधव और शांति पटेल ने। तो सुनते हैं सबकी फरमाइश पर प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत फिल्म का एक गाना। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था मध्य प्रदेश से उमा शंकर पटेल, प्रियांशी, नंदिनी, माधव और शांति पटेल ने। और इसी गाने के साथ आज का हमारा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। रात्रि के 9:30 होने को है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से।

0: उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवानी। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज़।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लूरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये

0: पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।
1: दो नैना मतवाले

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिक आई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

0: समा है, हर फूल में बसा है, हर चीज में उसी का जलवा झलक रहा।
1: पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्म शती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में सपनों के बीज रोपे थे, उनमें खिलने थे फूल, पर हर बीज कहां अंकुरित हो पाता है। वक्त की तेज धूप ने सूख ली नमी सपनों की, अब हवाएं भी चुभती हैं और आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियां जलन पैदा करती हैं। वक्त का पहिया किन किन दिशाओं में घूम जाता है समझ नहीं आता।

उदासियों का कोई मुल्क नहीं होता, वो हवाओं में उड़ती हैं किसी फाहे की तरह, जैसे किसी शाख पर थोड़ी देर बैठ जाए कोई पंछी। ऐसे किसी किसी जिंदगी में उदासी का पंछी आकर बैठ जाता है और फिर उड़ने का नाम नहीं लेता। उदासियां पसर जाती हैं तो फिर हटती नहीं है, सुरमई उदास शामों में गूंजती हैं खामोशियां।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल। ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया। दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में है धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये नगमा।

आंखें बोलती हैं सब कुछ। कहते हैं कि अल्फाज अपनी बात कहने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें। तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

एक सुबह आती है, दोपहर को अपना ताप सौंपती है और दोपहर अपनी थकान शाम की मुट्ठी में रख देती है। रातें बस हमारी अपनी होती हैं, रातों को सजती है यादों की महफिल। यादें जिनमें दर्द भी है, तकलीफें भी, यादें जिनमें आहें हैं, यादें जिनमें आंसुओं की नमी है।

0: आज के छाए गीत में थे तलत महमूद के नगमे, फिल्मों के नाम।
1: तेरी आँख के आँसू पी जाऊं।
0: फिल्म जहां आ रहा।
1: शामे गम की कसम आज गमगी है हम।
0: फिल्म फुटपाथ।
1: मेरे दिल कहीं और चल।
0: फिल्म दाग।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ

0: मुश्किल माता तान
1: वो जाने कैसा है ये जहां
0: हर जीना मुश्किल माता तान
2: हम फिर भी जी रहे हैं जख्मों को सी रहे हैं
3: हम फिर भी जी रहे हैं जख्मों को सी

यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ।

एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम

0: पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं।